lai yin yo do cha ga pa cha ji hun je dum bo chon je lai yin yo ye ni ko ne na byo du lai yin yo he ga ne ta na cha ga je le lam tha ga le he da ne ma yin yo lai yin yo ga pa le hum tha be be hum na ko ni lai yin yo thu ti pa na je me myo ja thu mi cha chi le khu du lai yin yo wa yo ma myo chwa lo ko lo jan cha tha ne nga je yin ya ma lo na yo ma je myo ja chwa lo myo chwa le mu nga yin ya kapa thai do ne ena ko ni tu the khai sin kha le nga yin ya a ji ji phu la ko lo ja nga le myo ja de nga yin yo na ये ना कोनी यहाँ पर तो ना कोनी यहाँ गुप्पा हमको ने यहाँ से तभी यार ले खा को मिचान ले अगर यू गुप्पा ने यार मेले ऐ ही मंगे लो ना मंगे का ऐ ना ये ना ले मंगे तो आयो माना बुचो अगर यू ले आदि माजी आयो मागा भी यू तो ले लो यू ना खुलो यू तो ना कोनी आदि मागे खुलो मोले तो ना यहाँ ने यार ले तो ना यू ना कोनी लो यू सीधा उन्हें ला लेंगा ये ना खुलो उन्हें ना कोनी खा को मिचा कोनी या मे लेंगा ये ना गो जंगले तो ना कोनी हुगो या मोमे हुगोनी पा उन्हें आये ना उन्हें गे लो यू आदि मा उजे ना कोनी आजी जी मो आये ना हुगो हुगो पा आदि मा ने यू माले कोनी माला ले ना तिपो ना कोनी पा थो लांग आजी सीधा बिलोने ला ले लो यू आदि मा सिन्या लांग या सीधा आदि मा ने अब बिने बिने हुगोनी ले बी जे जिंग आलो यू म्यो वे मा या या गा थुमिने हुगा कोनी सनिया गुंगा आय ना मिछा छी ले लो यू तो थे ले गा दुना तो थे ले म्यो फुला हे जी जी आ ले खुरो या मोना लो यू दि मा जी साइड दुओ ले खु दे या थो ने गा या हुगो कोनी ती ए ए ती ले गा यू हुगा ना कोनी यो जो ना थो ने मे जे या खुरो बंची मा ले खुरो मोना लो यू ना जाय नि हम थिम ना कोनी लो यू हुबा सान नु ले जांगा सी ले गा या छोने गु होले लो यू बा बा ना कोनी मे नाम खो फो कोनी ngơ ले मे नाम लु ले बु थांग आ या गो जि लो यू हो जि अन नि छि नि ग न ने दुला गा खाउ हम जि लो यू मलो ना होंगे बा ग दुला ने कुरो जा जा जा ने लो यू आदि मा गा सा पुला कुरो जा ग या यो गा ले गा या मे नाम खो फो ने कुरो नि ला लो यू तु मि ने हे फो फो ने मा ए दो लो यू आदि मा को जो जो ना को ने लो ले हुसा लो बा ले कु मे लो यू ले लो गो फुला कु ये नि जंगा ये नि गा सा नि जा जि बा छो मे नाम खो फो हे दो मा इ नि लो यू मे नाम जि हा फो थे लता फो ना छो मा म पुरा जम मे लो यू गोपा ने सांग फुला मे नि दुला गा जे ये नि ले गु हो ने यु कु नि जंगा सी ले गा ये नि सान नु थे लो यू अछो ने म ज ले ग खा पुरा लता फो ज ज ज छु ले सु पो ल लो ये सु पो दे तुम ने ग खा ने जे जे फुला ला ब बि पि ला ले फुला तुरो जम मे ये चु थे ना यु कु नि या जंगा सी ये नि तुम ने ये चु पुरा दो जि ये बु बु ला छो ने छे दो ने ओ यो अ तो लो ये नि अछो थो थो अला थ गा या ये जा या ये तो गा ये न्या ये चु फुला ग तो लो ये नि ते द ना कोन नाम बुला पापा बुला को लो तो अ लंगे ति पो ना ठी कोन नाम को नि लो ये नि तो को नि ति कोन नाम को नि यो मु दु ना यो मु गा ने यो हा ने मा ता था ले ये दु लो ये नि ले यो मु फा छि दु न्या दु थ मि ने अति मा को नि गा सा फुला ये जा ना ले लो गो फुला ये ने जा गा ये नि ना जाय ति मु ना को नि लो ये नि ग पा ति पो ना ก็จบผู้ละชังเลยอยู่ถนนเลยงานรถถนนนั่นก็จบงานเนี่ยคนรู้ยี่ห้อยรู้ยี่ห้อรู้ยรู้ยานเนี่ยอายุมันเนี่ยไปผู้ละมาบัตรนาเลยอยู่ก็ดูข้อแม่เลยมาบุตรมาบัตรนาที่มาลูกคือผู้ละมาโมนี่บัตรนาเนี่ยที่มาช่วยนะคนเนี่ยที่มาแรงงานเนี่ยบังงานเนี่ยตัวนี้ก็น่าดูข้องดีเลยช่วยไปมาบุตรที่จีมาบุตรนาเลยอยู่ที่จีมาบัตรนาคนรู้ยี่ห้อยก็ช่วยนาเลยอยู่คือเจ้าดิมาเลี้ยงลอยยาเจลเลี้ยงเนียยาเจียเนียยมายบบังเจลคุรุนาถึงมีเนคุรุจนาคุรุยมุนาคนเนี่ยดิมาดิมาแล้วก็ชนาเลยนี่ดูขอเธอจะตัวนี้ก็จอดคุรุจนาชั่งรู้เรื่องบุตรนาให้ดูบังอันเนี่ยก็ป้าบังดูนะคนนี้กุมทันหลวงไอ้บังเจียเนียทันหลวงชนะบุกไอ้บังเจียถึงมีเนทันหลวงท้องถิ่นไอ้บังเจียเนีย
那我光不看说通天的旁边这都是什么呢你妈葫芦哎呀妈拜的这么不疼啊你妈说老了卡心买托天了哎呀哎呀哎呀个拜不疼了也有多管你葫芦哎那管你吧三步了带着带着拍呀拍拍呀拍拍呀写人家提提那提提提提那提提了带着带着了也有葫芦哎呀妈妈老你妈讲啊哪喝了啊你妈妈讲啊我个拜佛嘛，家个的嘛嘞，成那咯，阿爸个都要托，都要托他啊，爷爷个拜了我们那，哎呀嘛，把他妈嘞陪了个的嘛，来他们家那过年，来嘛陪了个咯嘛陪了，都过年一样过年，葫芦一样一样过年都陪，有我们啊爷爷他们呢，个拜不他，只咯爷爷又嘛还看菩萨飞了不他过年，葫芦也莫那又嘛只还看菩萨嘛，并且求嘛了不他咯爷爷，后面那过年滴滴滴滴了，不要管啊爷爷。我那地里呢，差把那么土呢，洗洗了，怕呀不啊，也那洗洗了，怕呀过啊些人呀。我那等那穿个潮冷啊，个潮冷那可能要下过呢，呼噜呼噜，个潮呀嘞，也一年啊人呀，提不那咯。呼噜奶奶要下酒，嘞呼噜家个家家要地要产啊人呀，他们呢个脚不拉长那个么咯么咯，个脚门啊拉嘛门啊拉嘞要花，他们呢。葫芦娃啥也不谈啊，俩老人有，有的嘛有，有的是啥有啥样啊？爹那山里，和和那嘛家啊，那和那里嘞，还有嘛把他嘛嘞，怕骗那个你嘛把他嘞，你嘛怕呀骗了米了，有的米呢，有孩子有过把嘛嘞，干嘛那咯？干嘛抢个都个抢个都抢那个你木牌，莫个那个你胡谈了人有，把个脚不来，葫芦精啊吐了那么咯，么咯我了人有。那会求佛的不来那个你啊求那会的人那个你嘛里面打了人拿的人家的还有嘛会人个屁个屁的会人来求多了没有有会那边拿的人哄他们人家那会的人那打了人拿的我那啊求了我把公务中比了的人他们啊的嘛呢哎真的听不懂啊你你妈嘞，快点！和你妈嘞，老师傅们，我们来互相和你老爷爷碰了一下，把小公务装备嘞，他是那爷爷呢，就买五百克啦，爷爷，你妈六克头咯，六克头买嘞，头他别不了，摆他别不了，那好个电脑台，和老爷爷和啊叫空和也上了啊嘞，啊，就买新呀，几买爷爷对面呢，六克不啦个老爷爷，又还超不啦，啊，超那边我来和你。和个白呀样咩，人家的不那咯，的不那发发的那个呀样咩？那六口一生，娶一个你啊，娶娶一个六口一生也有啊，人家啊个一生啊，那玩那玩得了咯。那的不那嘛，新年那个你啊，的嘛我参加那边我个你，也不也巴不了当谈呢，别人呀个你也上班，人家六也上班，六口也上班，对面呢？有哈，全比俺嘞个那个呢，七级呀，女人家七级和级我呢，我呢这边没事嘞，我呢个娶伊没事嘞，我呢阿吉东没事嘞，七级的我没人嘞，有哈呢嘛干嘞，啥呢嘛干那个呢，我客户啦，老婆啦，那么比我便宜呢，有都嘛要雇我，把费扣费点个呢，收二路，费点不啦个我哩那个呢，把。也上也比没也上啊，就讲了没事啊，老爷牛和那个你又没怕，我说都过好啊嘞，干嘞，怕家倒怕家倒，那路口怕狗靠没老爷牛，路口呢怕怕车里面怕压的那没爷牛，干么子老爷牛，老爷牛干嘞，等那都吃的不用那边那买爷牛，都吃的不用过你，把卡汤怕个都得个老嘞，俺妈婆都得个老嘞，个脚个肚都得个老嘞，还有个那屁的那墙他那边那买爷牛，得过路那的买爷牛。